played this one earlier on this afternoon. And of course requested again. Like quite a few. Let me say sitar once again to Andy and Anna. Happy, happy Thursday night to you guys. Andy Sita Lakendal there in Montrose, Chaguanas. The Sings, Rishma and Dhruv. The Suknanans out in Endeavour, Chaguanas, Rian Suresh, the Varsh and Inder. The Raghus and Mahadevs out there in La Quesa, the Mohammeds of Prisal. Nahi Chaye Rangamahal, Na Dana Daulat Ke Shan. Hum to mange tujhse Malik. एक संतोष के दान के घर घर में खुशियाली हो सदा सुखी की हरियाली हो तूने हमको जाने दिया है तू ही पालनहार तेरी दया से फूले फले हम सब के घर संसार नहीं चाहिए हीरे मोती ना रातों की हार हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष के दान सुख से बदले दुख देने की अगर भगवान तेरी दुख को सहने की शक्ति दे यही परताने मेरी किसी के आगे हाथ ना फैलाई अपने मानत की सुखी पाई इतना दे वरदान हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष के दान ओ लॉर्ड नीदर कलरफुल और मैजेस्टिक पैलेस नॉर द प्राइड ऑफ मैसिव वेल्थ विल बी इनफ फॉर दिस ह्यूमन देयरफॉर आई आस्क नॉट फॉर मैजेस्टिक प्रॉपर्टीज और द ईगो ऑफ वेल्थ ऑल आई हम्बली बेग फॉर ओ ऑलमाइटी गॉड इज द गिफ्ट ऑफ कंटेंटमेंट मे आवर होम एंड एवरी होम Be blessed with the lushness of happiness and contentment. O Lord, you have gifted us this human life and you are our constant caretaker and protector. Please let our homes flourish with your kind blessings. Instead of precious gems, diamonds and pearls, we ask for the highest blessings of contentment. If it is your will, O Lord, that instead of happiness I find sorrowful times, then please give me the strength to withstand all the sufferings. Let me not have to spread my hands to beg help from anyone, since you will be there for me, O Lord. O Lord, please let me get the benefit of my earnest work, and please do bless me with contentment. Na chahiye rang mahal, na dana daulat ke shaan, हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष के दान के घर घर में खुशियाली हो सदा सुखी हरियाली हो

प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।

0: 102.7 FM, आपका धर्म, आपका स्टेशन, रेडियो जागृति।
1: मुकेश का क्या कहने, वो सुर लगाते ही, आवाज लगाते ही वो न जाने कुछ कर डालते थे। कहीं

0: FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।

चर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणि रंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Think you've tasted curry before? Think again. The Curry Festival at Fab India Expo brings you 10 unique regional Indian curry recipes in 10 days. Every day is a different adventure. From June 12th to the 21st, 11 a.m. to 9 p.m. opposite Medford Gas Station, Shukwanas. Taste India like never before.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Travel across India without leaving Trinidad. Experience the Curry Festival at the Fab India Expo, featuring authentic regional recipes from Goa, Punjab, Kerala, Rajasthan, Kashmir, and beyond. Every day offers a different taste, tradition, and story. June 12th to 21st, daily from 11 a.m. to 9 p.m., opposite the Medford gas station in Shigwanis. 10 regional curries. One unforgettable culinary journey.

0: प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: Think you've tasted curry before? Think again. The Curry Festival at the Fab India Expo brings you 10 unique regional Indian curry recipes in 10 days. Every day is a different adventure. June 12th to 21st from 11 AM to 9 PM opposite the Medford gas station in Chaguanas. Taste India like never before.
2: Magical music to tug at the heartstrings. This is Radio Jagriti 102.7 FM.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Whether wet or dry season, hazards can strike without warning, causing you or your family to quickly evacuate.

प्रेम से बोल श्री उमापति महादेव की जय। सो माय डियर डिवोटीज, विद एन ओमिस आई फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी ऑनर्ड टू हैव माय वंडरफुल चिल्ड्रन, माय गॉड डॉटर एज वेल, to also be a part of this wonderful night of celebration and satsang. So at this point in time, I'd like to ask them to give to us, to render a bhajan or two, and then we shall dwell within our katha for tonight.